0: खतर नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी, ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं हूं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो।
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: Hi, this is Umang Kumar और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। Keep listening।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो।
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji।

0: बोलना।
1: ओए पुले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दिनाल नजदीकी सिनेमा कला विच देखना ना भूलियो। ओए भोले ओए 2
3: बोला भाई।
4: हां जी मैं हूं एक और आप मुझे

0: रेडियो हांजी 1674 AM आज तारीख 11 जून 2026 और
1: चल दोस्तों मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674।

रेडियो हांजी 1674 AM आज तारीख 11 जून 2026 और वीरवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां लेके आए हैं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज दे नाल और अमरीका की तरफ तो छेड़ी हुई जंग दे नाल जुड़िया हुई। पहला खबर आती है कि ईरान की तरफ तो अमरीका ते हमला किया गया जबकि ईरान की तरफ तो मीडिया दे विच दस्या गया।

तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह ईरान की एक बड़ी धमकी भी कही जा सकती है। अमरीकी हमलों तो बाद ईरान की तरफ तो जड़े अमरीकी टिकाने ने मध्य पूर्व के उन्होंने निशाना बना बना के विन्या जा रहा है। बहरहाल मध्य पूर्व के हालात एक बार फिर तो खराब हो गए ने। इस किस्म की टिप्पणी भी इस वक्त गुरेज नहीं होएगी कि इस गल नू मान लिया जाए। उथे अगली खबर की सांझ पाइए तो भारत के नाल जुड़िया हुई भी यह खबर ने, जिथे सब तो पहला खबर दिल्ली दंगों के नाल जुड़ी हुई। दस दिए कि साल 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली के हुए दंगों के मामले च, हालांकि दुनिया भर के इन्ह दंगों ने चर्चा बटोरी सी। इंटैलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा का हत्याकांड भी 11 जून 2026 होया सी, और इस माफ करना 11 जून 2020 होया सी, और अज यानी कि 11 जून इसकी कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसला सुनाने की तरीक है। अडिशनल जज प्रवीण सिंह की अदालत दे विच प्रमुख दोषी ते आम आदमी पार्टी के सबका म्यूनसिपल कौंसलर ताहिर हुसैन सने 11 दोषियों की किस्मत का फैसला अज के दिन अदालत की तरफ तो किया जाना है। उथे नीट प्रबंधन के उत्ते संसदी कमेटी की मीटिंग भी है। नीट की प्रीख्या से उसके संचालन के नाल जुड़े हुए वख-वख मुद्दों के उत्ते संसद की निगरानी लगातार बढ़ रही है। इसे कड़ी के विच सेहत ते परिवार भलाई संबंधी संसदी स्थाई कमेटी ने, जिहड़ी एक परमानेंट कमेटी होंदी है पार्लीमेंट के विच, उन्होंने अहम मीटिंग की सी। कमेटी की प्रधानगी सीनियर संसद मैंबर राम गोपाल यादव ने की सी। मीटिंग का विषय नैशनल मैडिकल कमीशन यानी NMC एक्ट 2019 के तहत नीट प्रीख्यावान का संचालन सी। यह चर्चा सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय अधीन रेगुलेटरी संस्थावां दे ढांचे, उन्हां दीयां जिम्मेदारियां, किस तरीके दे नाल काम करदे ने, इन्हां दी समीक्षा वजों की जा रही है। बार बार सवाल उठ रहे सी कि नीट का पेपर आयोजित करवाने वाली संस्था NTA यानी कौमी प्रीख्या एजेंसी दे जड़े अधिकारी ने वो इस वक्त असफल ने इस किस्म की कौमी प्रीख्या नू करवाने दे लई, और इसे नू लैके जड़ा भारत भर दे विच एक विरोध शुरू हो गया सी। नाल लगदे ही हालांकि CBSE दे विच भी खामियां नज़र आईयां, ते इस तो बाद सोशल मीडिया ते बनी कॉकरेच। जनता पार्टी ने देश भर दे विच जिहड़े एक प्रदर्शन का बिगुल फूकिया सी, हालांकि राजधानी दिल्ली दे विच ही होया सी। हुण CJP यानी कॉकरेच जनता पार्टी दे फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे अस्तीफे की अपनी मंग दोहराई। उन्हें दोष लगाया कि वार वार गड़बड़ियां देश दे विच हो रही ने, लखां विद्यार्थियों का भविख खराब हो रहा। उन्हें कहा कि हुण इह गलत साबित हो गई है कि नौजवान देश दे विच पिछे नहीं हटणगे, हुण उह आत्महत्यावां नहीं करणगे बल्कि सरकार तो जवाबदेही मंगणगे। 6 जून दिल्ली दे जंतर मंतर दे विच जिहड़ा विरोध प्रदर्शन होया सी, उस तो बाद उन्हें कहा है कि हुण किसी ना किसी नूं तां जिम्मेदारी लैणी होएगी। जेकर जल्द ही बल्कि तरीक भी दे दित्ती गई है कि 13 जून तक धर्मेंद्र प्रधान बतौर सिक्ख्या मंत्री अस्तीफा नहीं देंदे तो देश व्यापी अंदोलन शुरू हो जाएंगे। उथे अगली खबर की सांझ पाइए तो सियासत के नाल जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चोणां दे लई अपना नॉमीनेशन रद्द किए जाने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा दीयां 3 सीटां दे लई चोणां होण वालियां ने। इन्हां चोणां दा नतीजा कुछ दिन पहला लगभग तय ही मन्निया जा रहा है। विधानसभा दे विच गिणती दे हिसाब दे नाल भाजपा नू 2 ते कांग्रेस नू 1 सीट मिलदी दिखाई दे रही सी, पर रिटर्निंग आफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन दी नॉमीनेशन रद्द कर दित्ती। भाजपा ने एक शिकायत च दोष लगाया सी कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नॉमीनेशन दे विच दाखल होए फार्म 26 दे विच अदालत दे अंदर कथित तौर दे उत्ते एक पुराने मामले की जानकारी नहीं दिती, लुको के रखी है। कांग्रेस ने इस दोष नू गलत दस्या ते रिटर्निंग आफिसर दे फैसले नू कानून दे खिलाफ दिता गया फैसला कहा। बुधवार दे दिन कांग्रेस दे सीनियर नेतावां दी तरफ तो एक वफद गया सी जिन्हां ने चोन कमीशन दे राज्यसभा चोणां दे लई दित्ती गई उम्मीदवारी मीनाक्षी नटराजन दे नॉमीनेशन नू रद्द किए जाण दा विरोध भी किया सी। दस दईए कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नॉमीनेशन रद्द करदे रिटर्निंग अफसर ने 2 ते 2, 5 नहीं बल्कि 7 कर दिते ने। मनु सिंह भी ने चोन कमीशन तो निकलन तो बाद कहा कि कोर्ट ने नटराजन के खिलाफ कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया बल्कि उन्होंने एक नोटिस भेजा जिस दे विच जवाब मंगया गया, हालांकि जवाब तो कांग्रेस की तरफ तो मंगे जा रहे हैं।
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ

0: मनोज जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट।
2: तेरे तो एक प्रॉमिस चाहिए था।
3: केड़ा प्रॉमिस?
2: जर्दा छड़ दे।

0: ओए बोले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
1: बोले ने कसूते फसाते
0: ओए बोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दिनाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भूलियो। ओए बोले ओए 2
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 04

0: 6606 दे या फिर विजिट करो बंसल इम।
1: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला।
2: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: पोले ने कसूते फसाते।
2: ओए पोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घर विच देखना ना भूलियो। ओए पोले ओए टू।
4: तेरे तो एक प्रॉमिस चाहिए।
5: केड़ा प्रॉमिस?
4: जर्दा छड़ दे।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो,
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: इतिहास जो सानू

0: एक्टर ने, है ना, जे मैं कहा कि ये तो है नहीं, बहुत सारे ने वेची, कई वेचन नू तैयार बैठे सी, कईयां ने वेचन तो बाद उन्हां नाल की होया।
1: ओके
0: सो कॉरपोरेट इनू किवें वेचण लई की हथकंडे अपनाउंदा, खरीदण लई किस तरह दे लालच दिंदा है, फिर जे उह नहीं मनदे तां फिर उह की हथकंडे अपनाउंदे है।
1: साम
0: सो
1: दाम
0: इहदे च
1: दंड भेद।
0: काफी, हांजी हांजी, इहदे च काफी कुछ सीगा, मतलब आपां इक चीज नहीं कह सकदे। इस करके मैनूं लगदा सीगा वी इह सारियां गल्लां इक च नहीं परोईयां जा सकदियां। तुसीं हुण सैकंड च देखोगे कि बहुत सारे करैक्टर्स, क्योंकि डीलरस भी इत्थों दे ही ने,
1: हाँ जी, आपने जो ही ने।
0: बकवा है ना, क्योंकि वह बकवाण लिए भेजते ही तुहाडे चाचे ताया नू ने, तुहाडे पिंड दे बंदिया नू ने, है
1: सू हुंदी है ना उहनां कोल।
0: ना। हाँ, क्योंकि वह पट्टन नू भेजते ही उन्हां नू है, क्योंकि उन्हां दी परसेंटेज हुंदी है कि तू सानू इन्ने च बका दे। फिर किवें कंपेयर करते है ना, ईवन कि इत्थे तां गड्डियां फॉरचूनर तां गड्डियां दे दिंदे डीलरां नू।
1: अच्छा,
0: मैं पिछे जे जदों असीं
1: एक
0: सर्च ते
1: डीप
0: लगे हुए
1: रिसर्च
0: सी ना
1: कीती हुई है भाजी कि मतलब तुसी
0: भाजी, थोनू मैं दसदा,

0: लता दी। हाँ,
1: तुझे चूज कर लो केड़े वाली दीदी, लता दीदी की ममता दीदी।
0: ए यशिका दी ने,
1: यशिका दी।
0: यशिका की सुनाओगे?
2: एक चुटकुला।
0: एक चुटकुला, ओके।
2: एक बंदा कुछ लभ रहा हुंदा ते दूजा आदमी आके पूछदा तू की लभ रहा, ते बंदा कहंदा मेरा ना बटुआ गमाच गया, ते ओ कहंदा अच्छा लभिया नी, ते कॉमन
1: है ये चीज़ है।
0: थैंक यू जशिका।
2: थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
0: नाल जशिका नु भी लिंग पलिंग भी दसया कर
2: जी।
0: हां, मेल फीमेल भी दसया कर एनु। कहंदा सेल्समैन सेल्समैन पूछदा तेरा मम्मी कर हैगा जरूरी बड़ा हो गया हुण। केवल नहीं जाया जाता पार्लर पर थोड़ी भी मम्मी
1: ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ
0: ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ
1: ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।
1: ਨਾਈਸ ਡੇ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਰਨਵ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ।
3: ਹੈਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ,
1: ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ?
3: ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ?
0: ਸਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ।
1: ਬੈਸਟ,
0: ਖਾਲੀ ਪੀਣੀ ਪੁਣੀ?
3: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ।
0: पहली गल ते चाह ना पिया कर, वेखे तेरी उम्र नहीं हले चाह पीण वाली, ना हार्मफुल हुंदी कैफीन हुंदी चाह च, है ना। ते दूसरी गल पी एवें चाह कल्ली ना पिया कर। पहली गल ते चाह ना पी
1: उल्टा शेर
0: सी गल कल्ली ना पी
1: कल्ली ना पी। ए अंकल ने देखना फसा लिया, पुछ के चाह पीती कि नहीं, फिर बाद च कह दे चाह नहीं पीनी।
0: चाह हुंदी आ
1: व्याह हल्की जी पत्ती वाली,
0: चाह हुंदी व्याह तो बाद वाली ड्रिंक।
1: हां,
0: जो बंदे दी परेशानियां वधदी नहीं, आई मीन के जो जो साथ मिल जाता, सॉरी जो साथ
1: कल्ले नहीं पीनी ना, कल्ले नहीं पीनी।
0: तू तो तक मेरा पुत चाह नहीं पीनी जो तक व्याह नहीं हो जाता, ठीक है? ओके ओके। आज उपदेशात्मक राफ्टर थेरेपी आज
1: आज बच्चे तो भीषण प्रतिज्ञा दी जा रही है भाई।
0: नहीं चंगी नहीं होती बच्चों लिए, नहीं चंगी होती चाह, ठीक है? दुध पी लिया करो सवेरे सवेरे, ठीक है? जो गला गुला खराब होया हो ना उदो थोड़ी थोड़ी कदी थोड़ी थोड़ी जी पा ली, है ना। ओके, पहलियां चे होर डर पाए होंगे ना, न्याणे नूं रंग काला हो जांदा हुण इत्थे तेल लै वी नहीं कह सकदे, दिन वट। की सुनाओगे फिर?
3: सुनाओगे एक बुजारत। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ।
0: ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
1: ਇਹ ਪਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਰੁੱਖ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ,
1: ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ
0: ਹੈ।
1: ਬੁੱਝੋ,
0: ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਟੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚੈਸ?
1: ਹਾਂ, ਓ ਗੁੱਡ।
0: ਹੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ?
1: ਜ਼ੈਬਰਾ?
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ।
1: ਲੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਬਈ।
0: ਹਾਥੀ? ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ
3: ਨਹੀਂ।
0: ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਗ?
2: ਨਹੀਂ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
4: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए बोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए बोले ओए टू
5: बोला भाई
6: जिंदाबाद जिंदाबाद। रेडियो हां जी 1600

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
4: हांजी रेडियो।
5: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो चीबर 1674 AM।
3: आज प्यार की हो डील,
4: डील बोले तो
5: हार्ट हार्ट,
6: हाँ यार सौदा सौदा,
5: ओहो
3: दोनों डील करा सील,
5: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 16.74 AM। कीप लिसनिंग।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हाँ जी 1674 AM

0: बोलना।
1: ओए पोले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते फसाते।
1: ओए बोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए बोले ओए टू।

डिमांड वध गई है क्योंकि दुबई चो लोग निकल रहे ने बाहर। फिर इन्वेस्टमेंट ड्रॉप किवें होया? हुण आस्ट्रेलियन निवेशक जिहड़े ने उह दुबई की रियल एस्टेट दे विच करोड़ां डालर का निवेश करते हैं हर साल। एक अंदाजा ही लगाया जाता है कि आस्ट्रेलियन लोगों का दुबई च इस वक्त 785 मिलियन डालर तो वध दी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है सिर्फ और सिर्फ रिहायशी प्रॉपर्टीज़ दे विच, यानी कि घरां घुरां दे विच ही इन्ना इन्वेस्ट होया। कमर्शियल प्रॉपर्टी का तो हले अंदाजा ही नहीं कोई, क्योंकि उहदा लगाया भी नहीं जा सकता। पर इस सिक्योरिटी शॉक ने इन्वेस्टर्स नू पिछे धक दिता, बैकफुट के उत्ते भेजता। नवा इन्वेस्ट कोई हो नहीं रहा, पैसा पुरानी इन्वेस्टमेंट बाहर हो रही है। दुबई लैंड बाहर का मतलब कि पैसा उत्थों खिंचया जा रहा है। जिहड़ा दुबई लैंड डिपार्टमेंट है उन्होंने अंकड़ों के मुताबिक सिर्फ जो फरवरी महीने जंग हुई सी उदों ही प्रॉपर्टी के सौद्या 50% गिरावट आ गई सी। दुबई च लगभग 90% आबादी दुबई के लोगों की नहीं हैगी, फॉरनर्स ने, एलियंस या दूसरे मूल के लोग ने। जे आस्ट्रेलिया ते होर देश इंडिया या होर भी जिन्हें भी देश है न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, सिंगापुर, इतों के इन्वेस्टर लगातार पिछे हटते रहे ते दुबई च जिहड़े लगातार वो नवीं बन रही लग्जरी विलास ने अपार्टमेंट्स की मार्केट है क्रैश हो जाएगी। मार्केट च प्रॉपर्टी की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी तो खरीददार भी कोई नहीं होएगा, जाहिर जी गल है कि क्रैश हो जाएगी। हुण आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जिहड़ी एंथनी अल्बनीज गल लिया के इत्थे मुकदी है कि भावें डायरैक्टली इन्होंने अपने आप नूं इस जंग तो दूर रखिया सी। शुरू शुरू दे विच अमेरिका ने कह रहे हैं कि मंगी सी मदद, पर पिछले दिन ही प्रधानमंत्री कहिंदे कि ना तो सानूं कोई लिखती गया, ना ट्रंप ने कोई फोन किया, मैनू कहिंदे सुपने थोड़े आ रहे हैं। वो अलग गल है कि वो ड्रोन मारी जा रहे हैं, मिजाइला मारी जा रहे हैं, पर एंथनी अल्बनीज कहिंदे कि सानू तो कहा ही नहीं अमरीका ने भी मदद करो साड़ी, अफगानिस्तान वेले किहड़ा कहा सी। पर खैर हुण आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डायरैक्टली अपने आप नूं इस जंग तो दूर रखिया सी, बट इनडायरैक्टली जिहड़ा वो प्रॉब्लम जरूर आस्ट्रेलिया भी भुगतनी पई है, इतों के इन्वेस्टर्स भी भुगतनी पई है, दुनिया भर में भुगतनी पै रही है। तो ये पिछे जिम्मेदार कौन है जानते ही हो तुसी। फिलहाल मैनू दिओ इजाजत इस खास रिपोर्ट के विचों, धन्यवाद।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो,
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: मैं शेर गिल, तुम सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: एक्सेस।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी नहीं हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: छेती छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
1: ओम शांति।
0: लास्ट एपिसोड में सिस्टर आपने कहा था आई मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं बिफोर आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी लाइन मिली, लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग। लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, इट्स अबाउट डूइंग, बीइंग एंड बिकमिंग। जैसे आपका बीइंग ब्लिस, इट्स अबाउट द चॉइसेस यू जस्ट मेड एंड द वंस यू आर अबाउट टू मेक। It's about the things you choose to say today. It's about the things you choose to say today. It's about what you are going to do after you finish reading this.
1: Beautiful. Now let me ask myself, do I agree?
0: अब वो choices की बात कर रहा हूँ, तो मैं agree नहीं करूँगा।
1: Life is not about expecting, hoping or wishing.
0: एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एम्बिशन नहीं होगा, होप नहीं करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, और विश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी तो निरस हो जाएगी।
1: जब हम कहते हैं एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, मतलब ये होगा तो, ये होना चाहिए, ये हो जाए मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा। एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग,
0: तीनों की वजह से तो मैं जिंदा हूं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैंने होप किया था कि मुझे प्रकाश परा वो फिल्म दे दे लावारिस, और मैंने विश किया था कि वो चले, तो मेरी तो जिंदगी इसी पे। और आप बोल रहे हैं कि ये चीजें तीनों।
1: एंड चॉइस आपने क्या की थी उसमें?
0: चॉइस की थी घर बार छोड़ के भागा था, इस काम के पीछे लगा था,
1: दैट इज द चॉइस।
0: मेहनत की थी, इस फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा,
1: Expecting,
0: दो साल घर से दूर रहा।
1: एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग जो तीन शब्द उन्होंने बताए, इसका मतलब ये होगा तो आई विल गेट सक्सेस, ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, ये हो जाना चाहिए मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। डिड यू जस्ट कीप वेटिंग, एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग?
0: दिस डज नॉट मीन कि आप इस पे काम ही नहीं करोगे, खाली होप करके बैठ के मंत्र पढ़ोगे।
1: दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है?
0: मेहनत तो अपनी जगह थी,
1: मेहनत अपनी जगह थी। क्या बनने के लिए मेहनत थी?
0: एक्टर बनने
1: के लिए। तो एक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जस्ट बाय एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग नहीं बनेंगे। चूजिंग टू बिकम, यू हैव चोजन टू बिकम, आपने उस पर मेहनत की है। अच्छा, एक्टर बनना था तो मेहनत भी किस चीज पे करनी पड़ेगी? उसी पे करनी पड़ेगी ना, उसी फील्ड में करनी पड़ेगी। ये भी नहीं हो सकता था कि मेहनत किसी और फील्ड में करें एंड बन जाए एक्टर, ये भी नहीं हो सकता था। जो चाहिए, जो बनना है, तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी? वहां करनी पड़ेगी। खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, सो व्हाट डू आई वॉन्ट टू बिकम? आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी बींग ना, तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी? ऑन बींग हैप्पी।
0: पॉइंट बहुत अच्छा बोला। जैसे सिस्टम मुझे किसी ने बोला था कि अभी आप बॉम्बे जाओगे एक्टर बनने तो खाना पीने के लिए तकलीफ हो जाएगी, तो आप ऐसे करो टेक्नीशियन बन जाओ, मतलब किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, साथ में सेट पे भी सबसे दोस्ती हो जाएगी, मंथली इनकम भी हो जाएगी, साथ साथ एक्टिंग के लिए रोल्स भी ढूंढते रहना। मैंने बोला ये बन जाऊंगा तो वो कैसे बनूंगा? फिर उन्होंने कहा कि फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, तो वहां फॉर्म में लिखा था फिल्म इंस्टीट्यूट में कि अगर आपको एक्टिंग कोर्स में सीट नहीं मिलेगी तो आप डायरेक्शन में जाओ, आप फोटोग्राफी में जाओ, एडिटिंग में जाओ, मतलब इतने सारे कोर्सेज थे, ऑप्शन थे। तो मैंने सारे ऑप्शन काटे, एक्टिंग और नथिंग एल्स।
1: परफेक्ट,
0: परफेक्ट।
1: जीवन का लक्ष्य, क्लैरिटी, व्हाट डू आई वांट टू बी, एक था।
0: वहां क्यों थी और दूसरी जगह क्यों नहीं थी? जीने में क्यों नहीं थी? बिहेवियर में नहीं थी? बाकी चीजों में नहीं?
1: बट द पॉइंट इज, जहां क्लैरिटी थी, अटेंशन दिया, एनर्जी वेंट देयर, रिजल्ट मिल गया। अब यही कोई और भी कहेगा, हाँ मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी बनना है एक्टर, लेकिन उतनी डिटर्मिनेशन, उतनी अटेंशन, उतनी एनर्जी अगर उसमें नहीं देंगे तो वो नहीं बनेगा।
0: मेरे क्लास में 1974 में टीचर ने एक लाइन बोली थी, आप लोग सभी यहाँ एक्टर बनने आए हो, लेकिन जिसको 99.9 भी मोटिवेशन है वो नहीं बन पाएगा। ही सेड आई वांट 100% मोटिवेशन, जिसका होगा वही जाके एक्टर बनेगा।
1: परफेक्ट।
0: और एडमिशन से पहले किसी ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि हमारी जात वाला गांव वाला है वहां का प्रिंसिपल उस टाइम पे, मैं उसके नाम चिट्ठी लिख दूंगा। तो फिर मैंने कहा अगर उस चिट्ठी के बेसिस पे मुझे मिल जाए एडमिशन, सिर्फ 8 स्टूडेंट लेते थे हजारों में से, लाखों में से, तो मैं जिंदगी भर यही सोचूंगा कि मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं।
1: राइट।
0: तो इतनी क्लैरिटी तब थी,
1: क्लैरिटी
0: इसी चीज में थी फील्ड में।
1: परफेक्ट ना, बट उसी इक्वेशन को भी दूसरी फील्ड में भी लगा सकते हैं ना, इक्वेशन राइट होनी चाहिए।
0: स्पिरिचुअलिटी, ये आप जो इतने एपिसोड से बात कर रही, इन चीजों में उतने परसेंट का 10% भी नहीं है।
1: बट कोई बात नहीं,
0: और 10% इच्छा भी नहीं होती मेहनत करके।
1: उसी इक्वेशन को अब लगा देते हैं इधर, उसी इक्वेशन को कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ खुशी के लिए, मेरी अपनी विल पावर है, आई विल बी हैप्पी। मैं सिफारिश से थोड़ी खुश होऊंगा फिर। इफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी देन वेयर डज माई कंप्लीट अटेंशन फोकस हैज टू गो।
0: सिफारिश से मुझे सीट मिलती, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो रहता।
1: Exactly.
0: यार शायद मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ।
1: मेरी विल पावर क्या हो गई,
0: कितनी हजारों गुना बढ़ी, कितना कॉन्फिडेंस।
1: यही जब हम अपनी खुशी के लिए बिगड़ लेंगे कि मेरी खुशी सिचुएशंस पर नहीं डिपेंडेंट है, मेरी खुशी अचीवमेंट्स पर नहीं डिपेंडेंट है। जिस दिन मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेरी खुशी मेरी अपनी अर्निंग है, मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी कमाई है, तो मेरा
0: कॉन्फिडेंस।
1: नाउ फियर, फियर कि मेरे जीवन में क्या आने वाला है, कुछ भी आए, कोई भी परिस्थिति
0: आने वाला है,
1: आने वाला है। कॉन्फिडेंस है दैट आई विल ऑलवेज।
0: अभी तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सच में पूछो तो इधर या मैं जीरो हूं।
1: अब इक्वेशन बहुत क्लियर है, इस इक्वेशन को अब उधर लगा देना किसी भी चीज पर जहां, दैट्स व्हाई इट्स।
0: मुझे क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है जो आप बोल रहे हो कि मेरे बार बार, हाँ ये तो ठीक है लेकिन वहां कैसे लगाऊं, मेरे मन में यही आ रहा है। रियल लाइफ में प्रैक्टिकल बात तो नहीं बोल रही है सिस्टर ये।
1: आपने एक बहुत ब्यूटिफुल जो थॉट पढ़ी है ना अभी, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग, क्योंकि ये एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग जब है तो सारी पावर किसको दे दी,
0: दूसरे को,
1: किसी दूसरे को, सिचुएशन को
0: पावर दे दी तो मैं हो गया कमजोर।
1: एब्सोल्युटली डिपेंडेंसी, जहां डिपेंडेंसी आएगी वहां फियर आएगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं। अब सेकंड लाइन इट सेज इट इज अबाउट डूइंग बीइंग एंड बिकमिंग। इट्स
0: कैन यू एक्सप्लेन दीज थ्री वर्ड्स,
1: सी द थ्री वर्ड्स, एक्सपेक्टिंग होपिंग विशिंग।
0: ये तो आपने बताया,
1: पावर कहां गई, बाहर
0: दूसरे के हाथ।
1: डिपेंडेंसी किस पर गई,
0: नहीं
1: परिस्थिति।
0: साथ साथ ये बोलना जरूरी है सिस्टर, पावर गई और मैं कमजोर हुआ।
1: नेचुरली ना, अगर मैंने आपको पावर
0: समय, उस समय में
1: जैसे आपने पिछली बार कहा शूटिंग ही नहीं हुई सारा दिन तो मैं डिस्टर्ब हूंगा ही ना, विच मीन्स मैंने पावर किसको दे दी,
0: शूटिंग के होने पर,
1: परिस्थिति को, सिचुएशन को। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू सी बिकॉज वी डूइंग इट एवरी डे। हम पावर किसको दे रहे हैं, Even when I leave my house first thing in the morning, I'm hoping there will be no traffic jam on the road. मैंने पावर किसको दे दी, क्योंकि अगर ट्रैफिक जाम होगा मैं लेट तो पहुंचूंगी, इज वन पार्ट ऑफ द थिंग, लेकिन ट्रैफिक जाम होगा आई गेट इरिटेटेड। मेरे पास अपनी पावर नहीं है, मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है, सिचुएशंस और लोगों के ऊपर। दैट इज एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग। दूसरी लाइन डूइंग बीइंग एंड बिकमिंग, ये तीनों फैकल्टीज किसकी है, मेरी है। इट्स अबाउट चॉइस।
0: घूम घूम पे मेरे पे आ जाते हो,
1: है ही सारा खेल वहां। अगर मैंने कहा ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये अच्छे होंगे, ये ठीक से बात करेंगे,
0: आप मेरा... तो ब्लेम करने का मौका ही नहीं दोगे कि मुझे किसी को
1: ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन ही नहीं वर्क करती है। बच्चा पास हो जाएगा आई विल बी हैप्पी, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा आई विल बी हैप्पी, करियर अच्छा होगा आई विल बी हैप्पी, प्रोफेशन में सक्सेस आई विल बी हैप्पी, कोई मुझसे प्यार से बात करेगा आई विल बी हैप्पी, कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा आई विल बी हैप्पी। विच वे इज द इक्वेशन फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इन, वो होगा तो आई विल बी हैप्पी। तो पावरफुल कौन, सिचुएशन एंड पीपल, मी टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। हियर इट कम्स एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग, बिकॉज नाउ आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग दैट एवरीथिंग आउटसाइड शुड बी नाइस, बिकॉज
0: व्हेन आई विल बी नाइस
1: देन आई विल बी हैप्पी. अगर शूटिंग पूरा दिन अच्छी चलती तो मैं खुश होता, लेकिन शूटिंग हुई नहीं ठीक से तो हाउ कैन आई बी हैप्पी, विच मीन्स माई हैप्पीनेस.
0: तो यही सुन रहे, घर में परिवार शांत रखेगा तो बाहर भी शांत रहेंगे, घर में अच्छा रहेगा तो बाहर भी अच्छा रहेगा. और उससे भी जब हम छोटे थे, जब गिर के रोते थे तो माँ बाप बोलते थे चींटी नहीं गड़बड़ की, चींटी को मारते माँ टेबल ने लगाया मार के, चलो टेबल को दो थप्पड़ मार के टेबल तो कितने गंदे है. सुरेश को ऐसा किया तो चलो हम लोग खुश हो जाते.
1: क्या सिखाया
0: हमको? यही सिखाया कि इसकी वजह से हुआ ना, तो टेबल की वजह से तो तुमको चोट आई, चलो टेबल पे को मारो.
1: It was not taught to us only right from the beginning. हमें सिखाई नहीं गई ये बात.
0: तो पसंद भी तो आती थी, सिखाई नहीं सिखाई.
1: क्योंकि हमेशा ब्लेम करना तो पसंद आएगा. हमारी इक्वेशन क्या बन गई जीवन की? सिचुएशन क्रिएट्स माई स्टेट ऑफ माइंड. परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को क्रिएट करता है. एंड वी लिव्ड आवर लाइफ लाइक दिस. दैट्स व्हाई दोज थ्री वर्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल. एक्सपेक्टिंग, होपिंग, विशिंग फॉर सिचुएशंस टू बी नाइस, फॉर पीपल टू बी नाइस.
0: मैं आपको एक बात बोलूं, आई मीन आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपकी अगेंस्ट बोल रहा हूँ. चलते चलते हमारा एक्सीडेंट हो गया था. अब इतनी बुरी परिस्थिति, हाथ में मेरे भाई की डेड बॉडी है, क्या परिस्थिति अच्छी लगती है क्या? आप कैसे बोल सकते हो ये बात?
1: राइट.
0: सारी कौन सी जिंदगी, किसका जीवन परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है?
1: परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है.
0: नहीं है, बिल्कुल नहीं है.
1: जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हो गया,
0: और परिस्थिति का इफेक्ट सबको होता है.
1: परिस्थिति का इफेक्ट हर एक पर होता है. लेट्स लुक एट इट हाइपोथेटिकली. अभी जैसे आपने कहा एक सिचुएशन, हम 10 लोगों पर आ जाए यहाँ पर, एक ही परिस्थिति. इवन लेट्स से कि शूटिंग नहीं हो रही थी, ये भी तो एक सिचुएशन ही थी. और हम
0: हर एक का रिएक्शन अलग अलग, यही बोलना है आप चाह रहे हैं?
1: बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये इम्पोर्टेंट नहीं है. परिस्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है जब परिस्थिति एक होगी. और परिस्थिति का
2: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई. एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने.
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा.
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हाँ जी 1674 AM।

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, इट्स योर बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो सत श्री अकाल जी,

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: creation is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: लो जी तुहाडी नजर है पोला
3: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
4: पोले ने कसूते फसाते
3: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए पोले ओए 2